0: लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा में साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन शुरू किया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज हम द्वितीय वैटिकन महासभा के प्रथम दस्तावेज साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पवित्र धर्म विधि के सिद्धांत पर अपनी धर्म शिक्षा माला की एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। इस धर्म सिद्धांत के अभिलेखन में धर्म सभा के पुरोहितों ने केवल धर्म विधि में एक नवनीकरण लाने का विचार नहीं किया, बल्कि कलीसिया को ख्रीस्त के रहस्य पर चिंतन करने और उस सजीव संबंध की गहराई से विचार मंथन करने को अग्रसर किया जो उसका निर्माण करती और उसे एकता में पिरोती है। वास्तव में धर्म विधि इस रहस्य के हृदय का स्पर्श करती है। यह हमारे लिए वह स्थल, समय और संदर्भ को व्यक्त करता है जिसे कलीसिया स्वयं येसु ख्रीस्त के जीवन से प्राप्त करती है, क्योंकि धर्म विधि में मुक्ति विधान के कार्य हमारे लिए परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं जो हमें चुनी हुई वंशावली बनाती है। एक राजकीय पुरोहिताई, एक पवित्र राष्ट्र और एक प्रजा जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने लिए बनाया है। संत पापा ने कहा, इसके त्रियामी नवीनता धर्म ग्रंथिय आचार्य और धर्म विधि जिससे होकर कलीसिया 20वीं सदी से होकर गुजरी, हमें इस बात का पता चलता है कि रहस्य का सवाल हमें एक अस्पष्ट सच्चाई को नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना को व्यक्त करता है जो वर्षों तक गुप्त रहा, जिसे हमारे लिए ख्रिस्त में प्रकट किया गया है, जैसे कि संत पौलुस हमें इसके बारे में कहते हैं। अतः यहाँ हम ख्रिस्तीय रहस्य को पाते हैं, अर्थात पास्का की एक घटना, कहने का अर्थ ख्रिस्त का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनका महिमान्वित होना जो हमारे लिए संस्कार्य रूप में धर्म विधि में उपस्थित रहता है, जिससे हम जब कभी समुदाय के रूप में उनके नाम पर जमा होते हैं हम अपने को उस रहस्य से साराबोर करते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए कलीसियाई रहस्य के आंतरिक उद्गम है। ईश्वर की पवित्र प्रजा जो क्रूस में उनके बेधित बगल से जन्मती है, पवित्र धर्म विधि में पवित्र आत्मा की शक्ति से वे कार्य करना जारी रखते हैं। वे अपनी वधु कलीसिया को पवित्र करती और उसकी एकता को बनाए रखते हैं जिसके द्वारा वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। वे अपनी अद्वितीय पुरोहिताई का उपयोग करते हैं। वे वचनों की उद्घोषणा में, संस्कारों में, पुरोहितों में जो बलि अर्पित करते, एकत्रित समुदाय में और सर्वश्रेष्ठ रूप में यूखरिस्ती में उपस्थित रहते हैं। इस भांति संत अगुस्टिन के अनुसार यूखारिस्तीय समारोह के अनुष्ठान में कलिसिया ईश्वर के शरीर को ग्रहण करती है और वही बन जाती जिसे वह प्राप्त करती है। वह ख्रिस्त का शरीर बन जाती है, पवित्र आत्मा में ईश्वर का एक निवास स्थल। यह हमारी मुक्ति का कार्य है जो हमें यीशु ख्रिस्त से संयुक्त करता और हमें एकता में बनाए रखता है। संत पापा ने कहा कि पवित्र धर्म विधि में इस एकता की प्राप्ति रीतियों और प्रार्थनाओं के अनुष्ठान में होती है। रीतियों के अनुष्ठान में कलिसिया अपने विश्वास को व्यक्त करती है, जैसे कि हम उसे लेक्स ओरेंदी लेक्स क्रेडेंदी में अभिव्यक्त पाते हैं। इसके साथ ही यह हमारे लिए कलिसियाई पहचान को व्यक्त करती है। वचन की घोषणा, संस्कारों का अनुष्ठान, प्रतीकात्मक निशानियां, शांति स्थल, ये सारी चीजें पिता ईश्वर के द्वारा एकत्रित लोगों का प्रतिनिधित्व करती और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करती जो पिता के द्वारा ख्रिस्त का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर स्वरूप एकत्रित किए जाते हैं। हर समारोह इस भांति हमारे लिए प्रार्थना में एक सच्ची ज्योति बनती है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें याद दिलाते हैं। यदि धर्म विधि ख्रिस्त के रहस्य की सेवा है तो एक व्यक्ति यह समझता है कि क्यों इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है। शिखर जिसकी ओर कलिसक के कार्य अभिमुख हैं, स्रोत जहां से उसकी सारी शक्ति प्रवाहित होती है। यह सच है कि कलिसक के कार्य केवल धर्म विधि तक ही सीमित नहीं है, जबकि उसके सारे क्रियाकलाप उपदेश दरिद्रों की सेवा मानवीय सच्चाइयों के संग चलना सारी चीजें उस शिखर की ओर अभिमुख होती हैं। इसके विपरीत धर्म विधि विश्वासियों का पोषण करती है, उन्हें यीशु के पास्का में सदैव डुबोती और उन्हें नवीन बनाती है और इस तरह वचन की उद्घोषणा द्वारा संस्कारों के अनुष्ठान और सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम वे ताजे बनाए जाते, प्रोत्साहित किए जाते और विश्वास में अपनी निष्ठा और प्रेरिताई को नवीन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वासियों का धर्म विधि के अनुष्ठान में सहभागिता अपने में आंतरिक और बाह्य दोनों है। संत पापा लियो ने कहा कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में एक ठोस तरीके से एक नैतिक और आध्यात्मिक आयाम को स्थापित करने का निमंत्रण पाते हैं, जिससे धर्म विधि का अनुष्ठान हमारे जीवन में सार्थक बने और यह हमसे एक निष्ठा की मांग करती है, जिसके फलस्वरूप हम उन बातों को ठोस पाते हैं जिनका अनुभव हम समारोह में करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बनता है जो पवित्र और ईश्वर को ग्रह्य होता है, जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक आराधना पूरी होती है। इस तरह से धर्म विधि प्रतिदिन उनका निर्माण करती है जो ईश्वर के मंदिर में रहते हैं, एक खुले समुदाय का निर्माण जो सबों का स्वागत करती है। वास्तव में यह पवित्र आत्मा का निवास है जो हमें ख्रिस्त के जीवन से परिचय कराता है। वह हमें उनका शरीर बनाता है उनके सभी आयामों में। यह ख्रिस्त में सारी मानव जाति की एकता को एक निशानी स्वरूप व्यक्त करता है। जैसे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, दुनिया इसे अभी तक नहीं जानती है, लेकिन हर किसी को मेमने के विवाह भोज में सहभागी होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। संत पापा ने कहा,
2: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
1: प्रिय मित्रों, हम अपने आंतरिक रूप से धर्म विधि के क्रियाकलापों, चिन्हों, उसके निशानियों और उससे भी बढ़कर धर्म विधि में ख्रिस्त की जीवित निशानी से अपने को पोषित होने दें, जिसकी खोज करने का अवसर हमें आने वाले धर्म शिक्षाओं में मिलेगा। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सन पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार आम दर्शन समारोह में कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम संत पापालियो के साथ स्टेज पर शामिल हुए। ठीक दो दिन पहले जब दोनों कलीसियाई धर्मगुरु सोमवार 18 मई को वाटिकन प्रेरितिक भवन में मिले थे और साथ में प्रार्थना की थी। संत पापालियो 14वें ने बुधवार आम दर्शन समारोह में अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम का अभिवादन करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, मुझे अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम और उनके साथ आए जाने माने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह भाईचारे वाला दौरा हमारे बीच पहले से मौजूद एकता के रिश्ते को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम अपनी कलीसियाओं के बीच पूरी तरह से एकता की ओर बढ़ रहे हैं। संत पापा ने कहा, इन दिनों जब हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस की कब्रों पर आपकी यात्रा पर पवित्र आत्मा की कृपा की दुआ करता हूं और मैं यहां मौजूद सभी लोगों से प्रभु से दिल से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी यात्रा और सभाएं पूरी एकता की राह पर एक और कदम बने। आइए हम लेबनान और मध्य पूर्व में शांति के लिए भी प्रार्थना करें, जो एक बार फिर हिंसा और युद्ध से टूट गया है। इसके बाद संत पापा ने ख्रिस्तीय एकता के प्रति उनके लगातार व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए खासकर कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय थियोलॉजिकल बातचीत के लिए अपना खास आभार व्यक्त किया। आम दर्शन समारोह के दौरान अपने अभिवादन में पोलिश भाषी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, 40 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्रेरितिक प्रबोधन डोमिनुम एत विविफिकेतुम प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने याद दिलाया था कि पवित्र आत्मा दिलों की रोशनी है और हमें अच्छे और बुरे को नाम से पुकारने की इजाजत देती है। जैसे हम पेंतेकोस्त का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह अपने उपहारों से अंतरात्मा को जगाएं, उन्हें अन्याय, हिंसा और युद्ध से दूर करें और धरती को नया रूप दे। और इताली भाषी विश्वासियों के अभिवादन में विशेषकर युवा एथलीटों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं एथिक्स इन स्पोर्ट मूवमेंट द्वारा प्रमोट किए गए कार्यक्रम के प्रतिभागियों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं उन युवा एथलीटों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी खेल गतिविधियों से प्रेरित होकर एक निबंध लिखा है। प्यारे दोस्तों, आपका एक नेक मिशन है खेल की आत्मा को बचाए रखना। याद रखें कि असली लक्ष्य भौतिक जीत नहीं है, बल्कि अपने विरोधी का सम्मान, निष्पक्ष खेल और सभी को शामिल करना है। और मंगलवार शाम को जब संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में विल्ला बारबारेनी से निकले, तो संत पापा का इंतजार एक बड़ी भीड़ कर रही थी। पोप लियो और लॉन्ग लिव द पोप के नारों के बीच कुछ लोगों ने बेनेडिकात गाया। यह फ्रांसिस्कन मंत्र है जिसमें फ्रातेर लियो ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं। संत पापा ने हाथ मिलाया मेक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और निकारगुआ के तीर्थ यात्रियों का अभिवादन किया और अपनी टोपी उन लोगों के साथ बदली जिन्होंने उन्हें वैसे ही टोपी दी थी, जबकि कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस समय को यादगार बनाने और उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें चिकलायो के कुकीज दिए, जो पेरू का वह धर्म प्रांत है जिसके संत पापा एक समय धर्माध्यक्ष थे। इसके बाद संत पापा ने एक दंपति को आशीर्वाद दिया जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल के बेटे को खो दिया। उधर अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और सभी लोगों को संबोधित करते हुए दक्षिण सूडान में टेम्बूरा याम्बियो काउंटी के धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरा ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों से सम्मान के साथ बातचीत करने, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करने की अपील की। धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरो के अनुसार दक्षिण सूडान के वेस्टर्न इक्वेटोरिया राज्य को पहले दक्षिण सूडान की रोटी की टोकरी,
दक्षिण सूडान का हरा भरा दिल, मेहमान नवाजी का बगीचा, बातचीत की मातृभूमि, कड़ी मेहनत की जमीन, मानव गरिमा का मंदिर कहा जाता था। लेकिन सालों की हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलों, भरोसे में कमी और जगह बदलने से हमारे सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंची है। उन्होंने अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और पूरी आबादी को संबोधित करते हुए दुख जताया। फिडेस न्यूज के अनुसार वेस्टर्न इक्विटोरियन राज्य ने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के कई हमलों का सामना किया है और इन सालों में कई तरह की लड़ाइयों का सामना किया है। फिर भी धर्माध्यक्ष हिबोरो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दर्दनाक सालों में से एक सच्चाई बहुत साफ हो गई है। हिंसा से हमारे समुदाय ठीक नहीं हुए, नफरत से भरोसा वापस नहीं आया, बदले से शांति नहीं आई। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने कहा कि सच्ची शांति बातचीत से आती है। इसी वजह से उन्होंने अपील की, आइए हम इज्जतदार बातचीत, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करें। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने सभी स्तर और पद के अधिकारियों, कलीसिया, युवा, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, नागर समाज और परिवारों से इलाज और शांति के पुल बनने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि जीवन ईश्वर का उपहार है। अपने संदेश में धर्माध्यक्ष हिबोरो ने बताया कि मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, आज एक लापरवाह भरा संदेश पीढ़ियों से बने रिश्तों को खत्म कर सकता है। शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। इसलिए धर्माध्यक्ष ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया जो जोड़ने वाली, शिष्ट, ज्ञानपूर्ण, हिम्मत बढ़ाने वाली और जिम्मेदार हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा में साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन शुरू किया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज हम द्वितीय वैटिकन महासभा के प्रथम दस्तावेज साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पवित्र धर्म विधि के सिद्धांत पर अपनी धर्म शिक्षा माला की एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। इस धर्म सिद्धांत के अभिलेखन में धर्म सभा के पुरोहितों ने केवल धर्म विधि में एक नवनीकरण लाने का विचार नहीं किया, बल्कि कलीसिया को ख्रीस्त के रहस्य पर चिंतन करने और उस सजीव संबंध की गहराई से विचार मंथन करने को अग्रसर किया जो उसका निर्माण करती और उसे एकता में पिरोती है। वास्तव में धर्म विधि इस रहस्य के हृदय का स्पर्श करती है। यह हमारे लिए वह स्थल, समय और संदर्भ को व्यक्त करता है जिसे कलीसिया स्वयं यीशु ख्रीस्त के जीवन से प्राप्त करती है, क्योंकि धर्म विधि में मुक्ति विधान के कार्य हमारे लिए परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं जो हमें चुनी हुई वंशावली बनाती है। एक राजकीय पुरोहिताई, एक पवित्र राष्ट्र और एक प्रजा जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने लिए बनाया है। संत पापा ने कहा, इसकी त्रियामी नवीनता धर्म ग्रंथिये, आचार्य और धर्म विधि जिससे होकर कलीसिया 20वीं सदी से होकर गुजरी, हमें इस बात का पता चलता है कि रहस्य का सवाल हमें एक अस्पष्ट सच्चाई को नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना को व्यक्त करता है जो वर्षों तक गुप्त रहा, जिसे हमारे लिए ख्रीस्त में प्रकट किया गया है, जैसे कि संत पौलुस हमें इसके बारे में कहते हैं। अतः यहाँ हम ख्रिस्तीय रहस्य को पाते हैं, अर्थात पास्का की एक घटना। कहने का अर्थ, ख्रिस्त का दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान और उनका महिमान्वित होना जो हमारे लिए संस्कार्य रूप में धर्म विधि में उपस्थित रहता है, जिससे हम जब कभी समुदाय के रूप में उनके नाम पर जमा होते हैं, हम अपने को उस रहस्य से साराबोर करते हैं। संत पापा लियो ने कहा,
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: ख्रीस्त स्वयं हमारे लिए कलीसियाई रहस्य के आंतरिक उद्गम है। ईश्वर की पवित्र प्रजा जो क्रूस में उनके बेधित बगल से जन्मती है, पवित्र धर्म विधि में पवित्र आत्मा की शक्ति से वे कार्य करना जारी रखते हैं। वे अपनी वधु कलीसिया को पवित्र करती और उसकी एकता को बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा वे अपने को पिता के लिए अर्पित करते हैं। वे अपनी अद्वितीय पुरोहिताई का उपयोग करते हैं। वे वचनों की उद्घोषणा में, संस्कारों में, पुरोहितों में जो बलि अर्पित करते, एकत्रित समुदाय में और सर्वश्रेष्ठ रूप में यूखरिस्ती में उपस्थित रहते हैं। इस भांति संत अगुस्टिन के अनुसार यूखारिस्तीय समारोह के अनुष्ठान में कलिसिया ईश्वर के शरीर को ग्रहण करती है और वही बन जाती जिसे वह प्राप्त करती है। वह ख्रिस्त का शरीर बन जाती है, पवित्र आत्मा में ईश्वर का एक निवास स्थल। यह हमारी मुक्ति का कार्य है जो हमें यीशु ख्रिस्त से संयुक्त करता और हमें एकता में बनाए रखता है। संत पापा ने कहा कि पवित्र धर्म विधि में इस एकता की प्राप्ति रीतियों और प्रार्थनाओं के अनुष्ठान में होती है। रीतियों के अनुष्ठान में कलिसिया अपने विश्वास को व्यक्त करती है, जैसे कि हम उसे लेक्स ओरेंदी लेक्स क्रेडेंदी में अभिव्यक्त पाते हैं। इसके साथ ही यह हमारे लिए कलिसियाई पहचान को व्यक्त करती है। वचन की घोषणा, संस्कारों का अनुष्ठान, प्रतीकात्मक निशानियां, शांति स्थल, ये सारी चीजें पिता ईश्वर के द्वारा एकत्रित लोगों का प्रतिनिधित्व करती और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करती जो पिता के द्वारा ख्रिस्त का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर स्वरूप एकत्रित किए जाते हैं। हर समारोह इस भांति हमारे लिए प्रार्थना में एक सच्ची ज्योति बनती है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय हमें याद दिलाते हैं। यदि धर्म विधि ख्रिस्त के रहस्य की सेवा है तो एक व्यक्ति यह समझता है कि क्यों इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है। शिखर जिसकी ओर कलिसिया के कार्य अभिमुख हैं, स्रोत जहां से उसकी सारी शक्ति प्रवाहित होती है। यह सच है कि कलिसिया के कार्य केवल धर्म विधि तक ही सीमित नहीं है, जबकि उसके सारे क्रियाकलाप उपदेश दरिद्रों की सेवा मानवीय सच्चाइयों के संग चलना सारी चीजें उस शिखर की ओर अभिमुख होती हैं। इसके विपरीत धर्म विधि विश्वासियों का पोषण करती है, उन्हें यीशु के पास्का में सदैव डुबोती और उन्हें नवीन बनाती है और इस तरह वचन की उद्घोषणा द्वारा संस्कारों के अनुष्ठान और सामुदायिक प्रार्थना के माध्यम वे ताजे बनाए जाते, प्रोत्साहित किए जाते और विश्वास में अपनी निष्ठा और प्रेरिताई को नवीन बनाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वासियों का धर्म विधि के अनुष्ठान में सहभागिता अपने में आंतरिक और बाह्य दोनों है। संत पापा लियो ने कहा कि इसका अर्थ यह भी है कि हम अपने रोजमर्रे की जिंदगी में एक ठोस तरीके से एक नैतिक और आध्यात्मिक आयाम को स्थापित करने का निमंत्रण पाते हैं, जिससे धर्म विधि का अनुष्ठान हमारे जीवन में सार्थक बने और यह हमसे एक निष्ठा की मांग करती है, जिसके फलस्वरूप हम उन बातों को ठोस पाते हैं जिनका अनुभव हम समारोह में करते हैं। इस तरह से हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बनता है जो पवित्र और ईश्वर को ग्रह्य होता है, जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक आराधना पूरी होती है। इस तरह से धर्म विधि प्रतिदिन उनका निर्माण करती है जो ईश्वर के मंदिर में रहते हैं, एक खुले समुदाय का निर्माण जो सबों का स्वागत करती है। वास्तव में यह पवित्र आत्मा का निवास है जो हमें ख्रिस्त के जीवन से परिचय कराता है। वह हमें उनका शरीर बनाता है उनके सभी आयामों में। यह ख्रिस्त में सारी मानव जाति की एकता को एक निशानी स्वरूप व्यक्त करता है। जैसे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, दुनिया इसे अभी तक नहीं जानती है, लेकिन हर किसी को मेमने के विवाह भोज में सहभागी होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। संत पापा ने कहा,
2: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
1: प्रिय मित्रों, हम अपने आंतरिक रूप से धर्म विधि के क्रियाकलापों, चिन्हों, उसके निशानियों और उससे भी बढ़कर धर्म विधि में ख्रिस्त की जीवित निशानी से अपने को पोषित होने दें, जिसकी खोज करने का अवसर हमें आने वाले धर्म शिक्षाओं में मिलेगा। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सन पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में बुधवार आम दर्शन समारोह में कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम संत पापालियो के साथ स्टेज पर शामिल हुए। ठीक दो दिन पहले जब दोनों कलीसियाई धर्मगुरु सोमवार 18 मई को वाटिकन प्रेरितिक भवन में मिले थे और साथ में प्रार्थना की थी। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार आम दर्शन समारोह में अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम का अभिवादन करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, मुझे अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के सिलिसिया के कैथोलिकोस प्रादि धर्माध्यक्ष आराम प्रथम और उनके साथ आए जाने माने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह भाईचारे वाला दौरा हमारे बीच पहले से मौजूद एकता के रिश्ते को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम अपनी कलीसियाओं के बीच पूरी तरह से एकता की ओर बढ़ रहे हैं। संत पापा ने कहा, इन दिनों जब हम पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस की कब्रों पर आपकी यात्रा पर पवित्र आत्मा की कृपा की दुआ करता हूं और मैं यहां मौजूद सभी लोगों से प्रभु से दिल से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी यात्रा और सभाएं पूरी एकता की राह पर एक और कदम बने। आइए हम लेबनान और मध्य पूर्व में शांति के लिए भी प्रार्थना करें, जो एक बार फिर हिंसा और युद्ध से टूट गया है। इसके बाद संत पापा ने ख्रिस्तीय एकता के प्रति उनके लगातार व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए खासकर कैथोलिक कलीसिया और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय थियोलॉजिकल बातचीत के लिए अपना खास आभार व्यक्त किया। आम दर्शन समारोह के दौरान अपने अभिवादन में पोलिश भाषी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, 40 साल पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्रेरितिक प्रबोधन डोमिनुम एत विविफिकेतुम प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने याद दिलाया था कि पवित्र आत्मा दिलों की रोशनी है और हमें अच्छे और बुरे को नाम से पुकारने की इजाजत देती है। जैसे हम पेंतेकोस्त का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह अपने उपहारों से अंतरात्मा को जगाएं, उन्हें अन्याय, हिंसा और युद्ध से दूर करे और धरती को नया रूप दे। और इताली भाषी विश्वासियों के अभिवादन में विशेषकर युवा एथलीटों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, मैं एथिक्स इन स्पोर्ट मूवमेंट द्वारा प्रमोट किए गए कार्यक्रम के प्रतिभागियों का दिल से स्वागत करता हूं और मैं उन युवा एथलीटों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी खेल गतिविधियों से प्रेरित होकर एक निबंध लिखा है। प्यारे दोस्तों, आपका एक नेक मिशन है खेल की आत्मा को बचाए रखना। याद रखें कि असली लक्ष्य भौतिक जीत नहीं है, बल्कि अपने विरोधी का सम्मान, निष्पक्ष खेल और सभी को शामिल करना है। और मंगलवार शाम को जब संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो में विल्ला बारबारेनी से निकले, तो संत पापा का इंतजार एक बड़ी भीड़ कर रही थी। पोप लियो और लॉन्ग लिव द पोप के नारों के बीच कुछ लोगों ने बेनेडिकात गाया। यह फ्रांसिस्कन मंत्र है जिसमें फ्रातेर लियो ईश्वर का आशीर्वाद मांगते हैं। संत पापा ने हाथ मिलाया मेक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और निकारगुआ के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और अपनी टोपी उन लोगों के साथ बदली जिन्होंने उन्हें वैसे ही टोपी दी थी, जबकि कई लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस समय को यादगार बनाने और उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उन्हें चिकलायो के कुकीज दिए, जो पेरू का वह धर्म प्रांत है जिसके संत पापा एक समय धर्माध्यक्ष थे। इसके बाद संत पापा ने एक दंपति को आशीर्वाद दिया जिन्होंने हाल ही में अपने 22 साल के बेटे को खो दिया। उधर अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और सभी लोगों को संबोधित करते हुए दक्षिण सूडान में टेम्बूरा याम्बियो काउंटी के धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरा ने सभी पृष्ठभूमि के लोगों से सम्मान के साथ बातचीत करने, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करने की अपील की। धर्माध्यक्ष एडवार्डो हिबोरो के अनुसार दक्षिण सूडान के वेस्टर्न इक्वेटोरिया राज्य को पहले दक्षिण सूडान की रोटी की टोकरी,
दक्षिण सूडान का हरा भरा दिल, मेहमान नवाजी का बगीचा, बातचीत की मातृभूमि, कड़ी मेहनत की जमीन, मानव गरिमा का मंदिर कहा जाता था। लेकिन सालों की हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलों, भरोसे में कमी और जगह बदलने से हमारे सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंची है। उन्होंने अधिकारियों, धार्मिक नेताओं और पूरी आबादी को संबोधित करते हुए दुख जताया। फिडेस न्यूज के अनुसार वेस्टर्न इक्विटोरियन राज्य ने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी LRA के कई हमलों का सामना किया है और इन सालों में कई तरह की लड़ाइयों का सामना किया है। फिर भी धर्माध्यक्ष हिबोरो ने इस बात पर जोर दिया कि सभी दर्दनाक सालों में से एक सच्चाई बहुत साफ हो गई है। हिंसा से हमारे समुदाय ठीक नहीं हुए, नफरत से भरोसा वापस नहीं आया, बदले से शांति नहीं आई। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने कहा कि सच्ची शांति बातचीत से आती है। इसी वजह से उन्होंने अपील की, आइए हम इज्जतदार बातचीत, मेल मिलाप और एकता की संस्कृति को फिर से शुरू करें। धर्माध्यक्ष हिबोरो ने सभी स्तर और पद के अधिकारियों, कलीसिया, युवा, महिलाओं, बुद्धिजीवियों, नागर समाज और परिवारों से इलाज और शांति के पुल बनने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि जीवन ईश्वर का उपहार है। अपने संदेश में धर्माध्यक्ष हिबोरो ने बताया कि मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, आज एक लापरवाह भरा संदेश पीढ़ियों से बने रिश्तों को खत्म कर सकता है। शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। इसलिए धर्माध्यक्ष ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया जो जोड़ने वाली, शिष्ट, ज्ञानपूर्ण, हिम्मत बढ़ाने वाली और जिम्मेदार हो। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता।

0: आमीन।
1: ज्योति का चौथा भेद प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पांचवा भेद पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हमारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, अस्तु मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। श्रोताओं, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसका परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण किया जाए। जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, और उन दोनों में संतुलन बनाकर रखना और जीवन जीना ही जीवन है। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ देखा, संसार की हर खुशी में खुशी मनाई, उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा, आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। वह मनी मन यह दलील देता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, जो धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुख सुख, धर्म और संसार, नैतिकता भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इनमें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। ये पद इस प्रकार हैं। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बना देती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ का सातवां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, धैर्य या सब्र और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में कहता है कि प्रज्ञा बुद्धिमान को शक्तिशाली बना देती है, और यह इसलिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रज्ञा के यानी कि ज्ञान के मूल्य को समझता है, वह उसकी सराहना करता है, वह ज्ञान को संजोकर रखना जानता है, वह मानवीय कमजोरियों को जानता है, वह यह भी जानता है कि सभी मनुष्य पाप के अधीन हैं और उनमें वह खुद भी शामिल है। इसीलिए उसकी शक्ति 10 शासकों से भी अधिक होगी। फिर उपदेशक परामर्श देते हुए कहता है, लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी अनर्गल कह देते हैं, प्रायः बिना सोचे समझे बक देते हैं, जो कि अनुचित है। इसलिए कि जब दूसरे, यहां तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं, तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न बोलें। श्रोताओ, कभी कभी दूसरों की कही और की गई बुरी या बिना सोचे समझे की गई बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते कि हमें कोई हमारे सबसे बुरे पलों या बुरे शब्दों से आंके या बुरे पलों के लिए हमें याद करे। उपदेशक का कहना है कि किसी को मत कोसो, ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। आगे सातवें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है कि प्रज्ञा दुर्लभ है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे है, वह गहरा है, बहुत गहरा है, कौन उसकी थाह ले सकता है। श्रोताओ, उपदेशक समझ गया था कि प्रज्ञावान बनने की उसकी इच्छा हमेशा सच्ची बुद्धि से पूरी नहीं होती। श्रोताओ, ये मान लेना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, यह विनम्रता का काम है। विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ अस्तित्व में है वह हमारी बुद्धि से परे है। बाइबल आचार्य किडनर कहते हैं, प्रज्ञा न पाने की नाकामी को ईमानदारी से मानना असल में हर कदम के साथ उसे दूर होते देखना, यह जानना कि हमारी कोई भी बात कभी भी चीजों की तह तक नहीं पहुंचती, यह समझदारी की शुरुआत ही नहीं बल्कि शुरुआत तक पहुंचने का एक उत्तम रास्ता है।
अस्तु श्रोताओ, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने लोक धर्मियों परिवार और जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धर्म पीठ के द्वारा आयोजित कलिसियाई संघों, विश्वासियों और नए समुदायों को प्रोत्साहित करने वाले संयोजकों के संघों से भेंट की। अपने संबोधन में संत पापा ने उन्हें कहा, कलिसिया यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक वैश्विक मुक्ति की निशानी हेतु स्थापित की गई है और यह एक वह स्थल है जहां हम ईश्वर की इच्छा को हर जाति और धर्मों के लोगों के लिए पाते हैं जो ख्रिस्त में मिलने वाली मुक्ति के फल को प्राप्त और अनुभव करें। इस अर्थ में कलिसिया की प्रकृति को हम संस्कार स्वरूप पाते हैं जिसका निश्चित रूप में बाह्य और संस्थागत आयाम है। इसके साथ ही हम इसे एक प्रभावकारी एकता के निशानी स्वरूप पाते हैं जिसके द्वारा हम त्रिएक ईश्वर के जीवन में सहभागी होते हैं। संत पापा ने विश्वासियों और कलिसियाई संघों के सदस्यों से कहा कि यह लोक धर्मियों का प्रशासन है जो बपतिस्मा में हमें ख्रिस्त के राजकीय पदों से विभूषित करता है। यह हमारे लिए वह स्थल बनता है जहां हम दूसरे विश्वासियों संघ के जीवन की सेवा हेतु बुलाए जाते हैं जो हमें दूसरों की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को सुनने हेतु साझा आत्म परख का निमंत्रण देता है। संत पापा ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा में तीन मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह सबों की भलाई हेतु हो, अर्थात इसके द्वारा समुदाय, संघ और पूरी कलिसिया का हित हो। अतः शासन का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित या दुनियावी रूप में प्रसिद्धि और शक्ति के उपयोग हेतु ना हो। दूसरा, यह ऊपर से दबाव के रूप में कभी उपयोग ना हो। अतः स्वतंत्रता में चुनाव जो उसे प्रभावकारी बनाता है। तीसरा, संघ के शासन में आत्म परख शामिल हो जो आदर्शों को सत्यापित करते हुए उनका उचित उपयोग करता हो। संत पापा ने शासन के संबंध में कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि उनमें एक दूसरे को सुनना, सह उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भ्रातृत्वमय निकटता और सामुदायिक आत्म परख की विशेषताएं सदैव होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए दिशा निर्देशिका की भांति हैं, लेकिन इनमें सदैव अधिकारी के कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संत पापा लियो ने सियेरा लियोन, बांग्लादेश, यमन, रवांडा, नामीबिया, मॉरिशस, चाड और श्रीलंका के अप्रवासी नए राजदूतों का प्रत्यय पत्र स्वीकारते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने अपने संबोधन में उन्हें कहा, कोई भी देश, समाज और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन अपने को न्यायपूर्ण और मानवीय तब तक घोषित नहीं कर सकता है अगर वह अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ताकत या खुशहाली के तर्ज पर हिसाब करते हुए हाशिए पर रहने वालों को नजरअंदाज करता हो। वास्तव में सबसे कमजोर और भुला दिए गए लोगों के लिए ख्रिस्त का प्रेम हमें हर तरह के स्वार्थ का परित्याग करते हुए गरीबों और कमजोरों के लिए कार्य करने का आह्वान देता है। संत पापा ने नए राजदूतों का स्वागत करते हुए कहा, ऐसे समय में जब दबदबा कायम करने हेतु हथियारों के जरिए शांति की चाह की जाती है, सभी स्तरों में द्विपक्षीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय एक ऐसी राजनीति की अति आवश्यकता है जो वार्ता को बढ़ावा दे और देशों में एक आम सहमति को स्थापित करने का एक माध्यम बने। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता जो हमें शांति की खोज हेतु सच्चे मार्ग में ले चलती हो या हमें सच्चाई को तोड़ मोड़ किए बिना उन शब्दों में अभिव्यक्ति की मांग करती है जो सत्य को प्रकट करते हैं। संत पापा ने कहा कि केवल इस तरह से गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मामलों में भरोसा फिर से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ का परित्याग करना है जो हम में एकजुटता की भावना लाती है जिसके माध्यम हम राजनीति में सेवा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूती लाते हैं जो हमारे लिए वार्ता और आपसी मिलन हेतु एक स्थल तैयार करता है।
अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने राजदूतों से कहा, आपकी प्रेरिताई वार्ता में मजबूती लाए, आपसी समझ को सुदृढ़ बनाए और हमारी दुनिया में जरूरी शांति स्थापना हेतु योगदान दे। उधर 19 मई को संत पापा लियो 14वें ने कास्तल गंदोल्फो में वेटिकन आकाश लोचन का दौरा किया और वहां मौजूद लोक धर्मियों और शोध कार्य में संलग्न लोगों से भेंट की। यह पहला अवसर नहीं था कि संत पापा लियो ने वेटिकन ऑब्जर्वेटरी की भेंट की। इसके पहले भी वे 20 जुलाई 2025 को चंद्रमा पर उतरने की 56वीं साल गिरह पर वेटिकन आकाश लोचन की भेंट की थी। यह खगोलीय आकाश लोचन रोम के निकट कस्तल गंदोल्फो में स्थित है, जहां संत पापा अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर मंगलवार को थोड़ा आराम में समय बिताया करते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि कम्युनिज्म के तहत धन्य शहीदों की शहादत हमें सिखाती है कि कोई ऐसी मानवीय स्थिति नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी या गलत क्यों ना हो, जिसमें हम ख्रिस्त को नहीं देख सकते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि शहादत मानवीय बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर की कृपा से तब तक भरने देना है जब तक कि मैं के लिए जगह ना बचे, बल्कि सिर्फ ईश्वर के, तुम और कलीसिया के, हम के लिए जीना हो। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अस्तु, मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। श्रोताओं, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसका परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण किया जाए। जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, और उन दोनों में संतुलन बनाकर रखना और जीवन जीना ही जीवन है। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ देखा, संसार की हर खुशी में खुशी मनाई, उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा, आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। वह मनी मन यह दलील देता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, जो धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुख सुख, धर्म और संसार, नैतिकता भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इनमें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। ये पद इस प्रकार हैं। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शास्त्र

सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, धैर्य या सब्र और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में कहता है कि प्रज्ञा बुद्धिमान को शक्तिशाली बना देती है, और यह इसलिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रज्ञा के यानी कि ज्ञान के मूल्य को समझता है, वह उसकी सराहना करता है, वह ज्ञान को संजोकर रखना जानता है, वह मानवीय कमजोरियों को जानता है, वह यह भी जानता है कि सभी मनुष्य पाप के अधीन हैं और उनमें वह खुद भी शामिल है। इसीलिए उसकी शक्ति 10 शासकों से भी अधिक होगी। फिर उपदेशक परामर्श देते हुए कहता है, लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी अनर्गल कह देते हैं, प्रायः बिना सोचे समझे बक देते हैं, जो कि अनुचित है। इसलिए कि जब दूसरे, यहाँ तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं, तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न बोलें। श्रोताओ, कभी कभी दूसरों की कही और की गई बुरी या बिना सोचे समझे की गई बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते कि हमें कोई हमारे सबसे बुरे पलों या बुरे शब्दों से आंके या बुरे पलों के लिए हमें याद करे। उपदेशक का कहना है कि किसी को मत कोसो, ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। आगे सातवें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है कि प्रज्ञा दुर्लभ है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे है, वह गहरा है, बहुत गहरा है, कौन उसकी थाह ले सकता है। श्रोताओ, उपदेशक समझ गया था कि प्रज्ञावान बनने की उसकी इच्छा हमेशा सच्ची बुद्धि से पूरी नहीं होती। श्रोताओ, ये मान लेना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, यह विनम्रता का काम है। विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ अस्तित्व में है वह हमारी बुद्धि से परे है। बाइबल आचार्य किडनर कहते हैं, प्रज्ञा न पाने की नाकामी को ईमानदारी से मानना, असल में हर कदम के साथ उसे दूर होते देखना, यह जानना कि हमारी कोई भी बात कभी भी चीजों की तह तक नहीं पहुंचती, यह समझदारी की शुरुआत ही नहीं बल्कि शुरुआत तक पहुंचने का एक उत्तम रास्ता है। अस्तु श्रोताओ, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने लोक धर्मियों परिवार और जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के द्वारा आयोजित कलिसियाई संघों, विश्वासियों और नए समुदायों को प्रोत्साहित करने वाले संयोजकों के संघों से भेंट की। अपने संबोधन में संत पापा ने उन्हें कहा, कलिसिया यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक वैश्विक मुक्ति की निशानी हेतु स्थापित की गई है और यह एक वह स्थल है जहां हम ईश्वर की इच्छा को हर जाति और धर्मों के लोगों के लिए पाते हैं, जो ख्रिस्त में मिलने वाली मुक्ति के फल को प्राप्त और अनुभव करें। इस अर्थ में कलिसिया की प्रकृति को हम संस्कार स्वरूप पाते हैं, जिसका निश्चित रूप में बाह्य और संस्थागत आयाम है। इसके साथ ही हम इसे एक प्रभावकारी एकता के निशानी स्वरूप पाते हैं, जिसके द्वारा हम त्रिएक ईश्वर के जीवन में सहभागी होते हैं। संत पापा ने विश्वासियों और कलिसियाई संघों के सदस्यों से कहा कि यह लोक धर्मियों का प्रशासन है जो बपतिस्मा में हमें ख्रिस्त के राजकीय पदों से विभूषित करता है। यह हमारे लिए वह स्थल बनता है जहां हम दूसरे विश्वासियों संघ के जीवन की सेवा हेतु बुलाए जाते हैं, जो हमें दूसरों की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को सुनने हेतु साझा आत्म परख का निमंत्रण देता है। संत पापा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में तीन मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह सबों की भलाई हेतु हो, अर्थात इसके द्वारा समुदाय, संघ और पूरी कलिसिया का हित हो। अतः शासन का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित या दुनियावी रूप में प्रसिद्धि और शक्ति के उपयोग हेतु ना हो। दूसरा, यह ऊपर से दबाव के रूप में कभी उपयोग ना हो। अतः स्वतंत्रता में चुनाव जो उसे प्रभावकारी बनाता है। तीसरा, संघ के शासन में आत्म परख शामिल हो जो आदर्शों को सत्यापित करते हुए उनका उचित उपयोग करता हो। संत पापा ने शासन के संबंध में कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि उनमें एक दूसरे को सुनना, सह उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भ्रातृत्व में निकटता और सामुदायिक आत्म परख की विशेषताएं सदैव होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए दिशा निर्देशिका की भांति हैं, लेकिन इनमें सदैव अधिकारी के कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संत पापा लियो ने सियेरा लियोन, बांग्लादेश, यमन, रवांडा, नामीबिया, मॉरिशस, चाड और श्रीलंका के अप्रवासी नए राजदूतों का प्रत्यय पत्र स्वीकारते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने अपने संबोधन में उन्हें कहा, कोई भी देश, समाज और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन अपने को न्यायपूर्ण और मानवीय तब तक घोषित नहीं कर सकता है अगर वह अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ताकत या खुशहाली के तर्ज पर हिसाब करते हुए हाशिए पर रहने वालों को नजरअंदाज करता हो। वास्तव में सबसे कमजोर और भुला दिए गए लोगों के लिए ख्रिस्त का प्रेम हमें हर तरह के स्वार्थ का परित्याग करते हुए गरीबों और कमजोरों के लिए कार्य करने का आह्वान देता है। संत पापा ने नए राजदूतों का स्वागत करते हुए कहा, ऐसे समय में जब दबदबा कायम करने हेतु हथियारों के जरिए शांति की चाह की जाती है, सभी स्तरों में द्विपक्षीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय एक ऐसी राजनीति की अति आवश्यकता है जो वार्ता को बढ़ावा दे और देशों में एक आम सहमति को स्थापित करने का एक माध्यम बने। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता जो हमें शांति की खोज हेतु सच्चे मार्ग में ले चलती हो या हमें सच्चाई को तोड़ मोड़ किए बिना उन शब्दों में अभिव्यक्ति की मांग करती है जो सत्य को प्रकट करते हैं। संत पापा ने कहा कि केवल इस तरह से गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मामलों में भरोसा फिर से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ का परित्याग करना है जो हम में एकजुटता की भावना लाती है, जिसके माध्यम हम राजनीति में सेवा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूती लाते हैं, जो हमारे लिए वार्ता और आपसी मिलन हेतु एक स्थल तैयार करता है।
अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने राजदूतों से कहा, आपकी प्रेरिताई वार्ता में मजबूती लाए, आपसी समझ को सुदृढ़ बनाए और हमारी दुनिया में जरूरी शांति स्थापना हेतु योगदान दे। उधर 19 मई को संत पापा लियो 14वें ने कास्टल गंदोल्फो में वेटिकन आकाश लोचन का दौरा किया और वहां मौजूद लोक धर्मियों और शोध कार्य में संलग्न लोगों से भेंट की। यह पहला अवसर नहीं था कि संत पापा लियो ने वेटिकन ऑब्जर्वेटरी की भेंट की। इसके पहले भी वे 20 जुलाई 2025 को चंद्रमा पर उतरने की 56वीं साल गिरह पर वेटिकन आकाश लोचन की भेंट की थी। यह खगोलीय आकाश लोचन रोम के निकट कस्तल गंदोल्फो में स्थित है, जहां संत पापा अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर मंगलवार को थोड़ा आराम में समय बिताया करते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि कम्युनिज्म के तहत धन्य शहीदों की शहादत हमें सिखाती है कि कोई ऐसी मानवीय स्थिति नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी या गलत क्यों ना हो, जिसमें हम ख्रीस्त को नहीं देख सकते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि शहादत मानवीय बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर की कृपा से तब तक भरने देना है जब तक कि मैं के लिए जगह ना बचे, बल्कि सिर्फ ईश्वर के, तुम और कलीसिया के, हम के लिए जीना हो। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।